लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलहारण जल थल मही अल सोए अष्टपदी करण करावन करण जोग जो तिस पावे सोई होग खिन में था पो था पनहारा अंत नहीं कुछ पारा वारा हुक्म तार अधर रहावे हुक्म उपजे हुक्म समावे हुक्म ऊच नीच व्योहार हुक्म अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक समय रहा समाई प्रभ पावे मानक गत पावे प्रभ पावे ता पाथर तरावे प्रभ पावे बिन सास तेरा कह प्रभ पावे ता हर गुण भाख है प्रभ पावे ता पत तो उधार है आप करे आपन विचार है दोहां सिरिया का आप स्वामी खेले बिग से अंतर जामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर ना आवे को मानक ते क्या होए आवे जो तिस पावे सोई करावे इसके हाथ होए तां सब किछ ले जो तिस पावे सोई करे अनजानत बिख्या मैं रचे जे जानत अपने आप बचे भरमे भूला दे दे तावे निमख माए चार कुंट फिर आवे कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिन में नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब नवाज जाका दृढ़ कछु न आवे ते तत्काल दै दिस प्रगटावे जाको अपनी करे बगसीस ताका लेखा न गने जगदीस जियो पिण सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपने बणत आप बनाई नानक जीवे देख बडाई इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावे सोई पुन थियो कबू ऊच नीच में बसे कबू सोग हर खरंग हसै कबू नंद चंद ब्योहार कबू उब कास पयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कबू नृत्य करे बहुपात कबू सोए रहे दिन रात कबू महाक्रोध बिकराल कबू सर्ब के होत रवाल कबू होए बहे बड़ राजा कबू पिखारी नीच का साजा कबू आप कीर्त में आवे कबू भला भला कहावे जो प्रव राखे ते वही रहै गुर प्रसाद नानक साच कहै कबू होए पंडित करे बघियान कबू मोन धारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सद साधक मुख ज्ञान कबू कीट हाथ पतंग होए जिया अनक जोन भरमे भरमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखावै जो प्रव भावे तिवे नचावै जो तिस पावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोय कबू साध संग त्यो पावै उस थान ते बोहर न आवे अंतर होए ज्ञान परगास उस थान का नहीं बिनास मंत्र नाम रते एक रंग सदा बसे पार ब्रह्म कै संग जो जल में जल आए खटाना त्यो ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवना पाए विश्राम नानक प्रभ कै साध कुरबान सलोक सुखी बसे मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत समान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बेटा का जंत आपस को कर्मवंत कहावे जन मरे बो जोन भरमावे तन भूमिका जो करे गमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानकीहा मुक्त आगे सुख पावे तनवंता होए कर गर्भावे तृण समान कछ संग न जावे बोलस्कर मानक ऊपर करे आस पल पीतर ताका होए बिनास सब ते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत किसे न बदे आप अंकारी धर्म राय तिस करे खुवारी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगे परवान कोट कर्म करे हो तारे शर्म पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार अनक जतन कर आत्म ने दरवै हर दरगे को कैसे गवै आपस को जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्ब की रेन जाका मन होए को नानक ताकी निर्मल सोए जब लग जाने मोजते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए जब जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग निश्चल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हो छूटै सहस खटे लख कोठ तावे त्रिवतन आवे माया पाछ पावे अनक भोग बिख्या के करै नै त्रिवतावे।

ਖਾਪ ਖਾਪ ਮਰੈ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕਉ ਰਾਜੈ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜ ਹੈ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਬੜਭਾਗੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਇਸਕੇ ਹਾਦ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂ ਕੈ ਸੰਗ ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੇ ਬਵੇਕ ਆਪੇ ਏਕ ਆਪੇ ਅਨੇਕ ਮਰੇ ਨਾ ਬਿਨਸੇ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੇ ਆਪ ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ ਆਪ ਆਪ ਕਿਨੋ ਆਪਨ ਬੇਥਾਰ ਸਭ ਕਛ ਉਸਕਾ ਉਹ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਉਹਤੇ ਭੈਣ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ ਥਾਂ ਥਨਾਂਤਰ ਏਕੈ ਸੋਏ ਆਪਣੇ ਚਲਤੇ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਖਿਆਨੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਭ ਕੀਨਾ ਕੋੜ ਮਦੇ ਕਿਨ ਬਿਰਲੇ ਚੀਨਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਆਪਾਰ ਅਨੂਪ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਘੱਟ ਸੁਨੇ ਸਰਬਨ ਬਖਿਆਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਨੀਤ ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰ ਸੋ ਜਨ ਉਧਰਨ ਹਾਰ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਆਰਜਾ ਘਟੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਜਮਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਸੁੱਖ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਨਰਕ ਮਹਿ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਹਤੇ ਕੋ ਰੱਖੇ ਨਾ ਕੋਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਭੀ ਤਰੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਵੈ ਸੰਤਨ ਕੇ ਦੁਖਨ ਕਾਕ ਜਿਉ ਲਵੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਰਪ ਜੋਨ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਕਰਮਾਏ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਹਿ ਜਲੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਭ ਕੋ ਛਲੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤੇ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨੀਚ ਨਿਚਾਏ ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਓਏ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਅਤ ਤਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਖਿਨ ਟਿਕਨ ਨਾ ਪਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਹਥਿਆਰਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀਆ ਅਰਦੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਸਰਬ ਰੋਗ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਸਦਾ ਬਿਜੋਗ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੋਖ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾ ਪੀ ਹੋਏ ਮੋਖ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਆਪਵਿਤ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਤ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਡਾਨ ਲਾਕੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਸਭ ਤਿਆਗੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਮਹਾਹੰਕਾਰੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਬਿਕਾਰੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖ ਨਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਟਰੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਨਾਹੀਂ ਠਾਓ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅਧ ਬੀਜ ਤੇ ਟੂਟੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਤੇ ਕਾਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਉਦਿਆਨ ਭਰਮਾਈਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉੱਜੜ ਪਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਥਾ ਜੋ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮਿਰਤ ਕੀ ਲੋਥਾ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਛ ਨਾਹੇ ਆਪਣ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੇ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਅਵਰ ਨ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲਏ ਉਭਾਰ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਇਉਂ ਬਿਲ ਲਾਏ ਜੋ ਜਲ ਬਿਹੂਨ ਮਛਲੀ ਤੜ ਫੜਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੈ ਜੋ ਪਾਪ ਗਿੰਦਨ ਨਹੀਂ ਧਰਾਪੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਛੁਟੇ ਅਕੇਲਾ ਜੋ ਬਵਾੜ ਤਿਲ ਖੇਤ ਮਾਹੇ ਦੁਹੇਲਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦ ਮਿਥਿਆ ਕਹਿਤ ਕਿਰਤ ਨਿੰਦ ਕਾ ਧੁਰ ਹੀ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਥਿਆ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਦਰ ਗੈ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਸਹਿਕਾਈਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਜੀਵਾਈਐ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਪੂਜੇ ਨਾ ਆਸਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉੱਠ ਚਲੇ ਨਿਰਾਸਾ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟੈ ਕੋਏ ਜੈਸਾ ਭਾਵੇ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਏ ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਸਭ ਕੜ ਤਿਸਕੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਿਸੇ ਧਿਆਵੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਸਭ ਕਛ ਵਰਤੇ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋ ਥੀਆ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਆਪਣ ਨਾਮ ਦੇ ਬੜਭਾਗੇ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇ ਸਲੋਕ ਤਜੋ ਸਿਆਣਪ ਸੁਰ ਜਨੋ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ ਇਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਭਰਮ ਪਉ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
मन की टेक व्यर्थी सब जान देवन को एके भगवान जिसके दिए रहे अगाए बो न तृष्णा लागे आए मारे राख एको आप मन के कछ नाही हाथ तिसका हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन लाके कोए औसत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सात व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सहेला कर ले जियो नैनो पेख ठाकर का रंग साध संग बिनसे सब संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटे भाव जपिए हर बिंद कर हर कर्म सरवन हर कथा हर दरगह नानक ऊजल मथा बड भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से धनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने एते उत की ओ सोजी जान नाम संग जिसका मन मान्या नानक तिने निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजे तिसकी जानो तृष्णा बुझे साध संग हर हर जस कहत सर्ब रोग ते ओ हर जन रहत अंतन कीर्तन केवल बखियान गृहत मैं सोई निर्वाण एक ऊपर जय जन की आसा तिसकी कटिए जम की फासा पार ब्रह्म की जैस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर प्रभ मन चेत आवे सो संत सहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवको किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाय अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तत सा बूझिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सूखम सोई असथूल नै किश जन्म है नै किश मर आपन चल ते आप ही करै आमन जावन दृढ़ अन दृढ़ आज्ञाकारी धारी सब श्रेठ आपे आप सकल मैं आप अनक जगत राय थाप ओथाप अविनाशी नाही किज खंड धारण धारहो ब्रह्मांड अलख अपे पुरख प्रताप आप जपायता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सगल संसार उधरे तैन मंत प्रभ के सेवक सगल उदारण प्रभ के सेवक दुख बिसारण आपे मेल लै कृपाल गुर का शब्द जपै निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसनो कृपा करे बड भागै नाम जपत पावे बिश्राम नानक तिन पुर को उत्तम कर मान जो कुछ करे सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसे हर संग सहस पाए होवे सो होए करने हर पछाणे सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजित समाए समाए उस सुख निधान उनहु बन आए आपस को आप दीनो मान नानक प्रभ जन एको जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जाननहार जाके सिमन उदरिय नानक तिस बलहार अष्टपदी टूटी गंडन हार गोपाल सर्ब जी आपे प्रतपाल सगल की चिंता जैस मन माहे ते ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अबनासी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सो प्राणे लोचै कोय तिस बिर नाही तेरे किस काम गत नानक जाप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह प्रभ की जोत सगल घट सोह धनवंता होए क्या को गर्ब है जा सब कह तिसका दिया दर्ब है अत सूरा जे को कहावे प्रभ की कला बिना कहतावै जे को होए बहे दातार तह दीन हर जाने गावार जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सो जन सदा अरोग जो मंदिर को थमे थमन त्यो गुर का शब्द मने अस थमन जो पखाण नाव चढ़ तर प्राणी गुर चरण लगत निस्तर जो अंधकार दीपक प्रगास गुरदर्शन देख मन होए विगास जो महा उद्यान में मार्ग पावे त्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बाछो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बैल लाई है पुरब लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख प्रव देवन हार अवर त्याग तू तिसे चितार जो कछ करे सोई सुख मान भूला काहे फिरे अजान कौन बस्त आई तेरे संग लपट रहो रस लोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पद सेती घर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया तज अभिमान लिहो मन मोल राम नाम हिरदे मैं तोल
लाद के पसंत संग चाल अवर त्याग बिख्या जंजाल धन धन कहे सब कोय मोख उजल हर दर गै सोय एहो व्यापार विरला व्यापार नानक ता कह साध बलहार चरण साध के धोए धोए पियो हर प्रसाद को अपना जियो साध की तूर करो इसनान साधु पर जाइए कुरबान साध सेवा वडपाकी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए अनक बिघन ते साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस चाखे ओट गई संत दर आया सर्व सुख नानक ते पाया मृत को जीवा ननहार भूखे को देवत आधार सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे पुरब लिखे का लहना पाहे सब किस तिसका ओह करण है जोग तिस बिन दूसर होआ न होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल एह करणी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तेजन आवे हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिए ते लोहे जाके हिरदे एको होए सच करणी सचता की रहत सच हिरदे सात मुख कहत साची दृढ़ साचा आकार सच वरते साचा पासार पार ब्रह्म जन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग किच त्रै गुण ते प्रभ भिन्न तिसे बजाए नानका जिस होवै सो परसन अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन में राख मन की तू प्रीत त्याग तेहते पर नाही किच कोय सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गहीर सजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बखसंद साध तेरे की चरणे पाओ नान कह मन एहो अनराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर अंदरू मंगल साध जाक सर्ब थोक सुनिए घर ताक राज में राज जोग में जोगी तप में तपीसर गृहस्थ में भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस पुर का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल प्रोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाम त्यावै से तह गुण में जाको भरमाए जन मरे फिर आवै जाए ऊज नीच तिसके अस्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करे एक रंग नाना वेद की नौ विस्तार प्रभ अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे खैन माहे पूर रहो पूर्ण सब ठाए नाना वेद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब गढ़ तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम के संग उतरे सुन सरवन कर कृपा जैसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जा का सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाके बाणी सत पुरख सा माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जाके हृदय प्रवेश सत निरत बूझे जे कोय नाम जब ताकि गत होए आप सत किया सब सत आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी श्रेष्ठ सो करना हार अव न बूझ करत बिचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष भावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पै बिस्माद जिन बूझ तसे आया स्वाद प्रभ कै रंग राच जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दो काटन हार जाकै संग तरै संसार जन का सेवक सो वडभागी जन कै संग एक लिव लागे गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै सलोक आद सच जुगाद सच
है भे सच नानक होसी भे सच अष्टपदे चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत ध्यावनहार आप सत सत सब धारी आपे गुण कारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत सरूप हृदय जन मान्या करन करावन तन मूल पछान्या जाकै हृदय विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान तस मन प्रगटाया भय ते निरभउ होए बसाना जै ते उपजै तस माहे समाना बस्त माहेले बस्त गडाए ताको भिन्न न कहना जाए बूझे बूझन हार बवेक नारायण मिले नानक एक ठाकर का सेवक आज्ञाकारी ठाकर का सेवक सदा पुजारी ठाकर के सेवक है मन प्रतीत ठाकर के सेवक की निर्मल रीत ठाकर को सेवक जाने सांग प्रभ का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धार है नानक सो सेवक सा सा समार है अपने जन का पर्दा ढाक है अपने सेवक की सार पर रख है अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पात रख है ताकि गत मित कोय न लाख है प्रभ के सेवक को कोना पहुँचे प्रभ के सेवक ऊचते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया निकी कीरी मैं कल राख है भसम कर लस्कर कोट लाख है जिसका सास न काटते आप ताको राख दे कर हाथ मानस जतन करतब पात तिसके करतब बिरथे जात मारे न राखे अवर न कोय सर्ब जिया का राखा सोय काहे सोज करे रे प्राणी जप नानक प्रभ लख बडाणी जप नानक प्रभ लख बडाणी बारंबार बार प्रभ जपिए पी अमृत मन तन तृपिए नाम रतन जन गौरमुख पाया तिस किश अवर नाही दृष्टाया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिपताने मन तन नामे नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कह साध काम बोलो जस जहबा दिन रात प्रभ अपने जन की निदात करे भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने सो रह समाए जो होवा होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पैर प्रभ बसे हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे तन की ओट ले मन तन अपना तन जन देह जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्ब थोक का दाता तिसकी सरण सर्ब सुख पावै तिसके दरस सब पाप मिटावै और सियानप सगली छाड़ तह जन की तू सेवा लाग आमन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसक संग सिख उदर नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल शिव को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख बेकार ते हटै सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख वडभागी है सतगुर सिख का हलत पलत सवार नानक सतगुर सिख को जी नाल समार गुर के ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सद त्याव मन बेचे सतगुर के पास ते सेवक के कार्य रास सेवा करत हुए निकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मतले बीस बिस्वे गुर का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गत जान सो सतगुर जस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्ब निदान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कछ भरम सह सियान पलया न जाइय नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइय
सफल दर्शन पेख तपनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पीड़ित संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुन कर भजन करन अगाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर अखियो जाका मंत्र अमर दृढ़ पेखे होए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे तस लय मिलाए जे बाय कौतत अनेक सत पुरख पूर्ण विवेक काहु बोल न पहुंचत प्राने अगम गोचर प्रभ निर्बानी निराहार निर्वैर सुख दाई ताकि कीमत किने न पाई अनक भगत बंधन नित कर चरण कमल हिरदे सिमर सद बलहारी सत गुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावे जन कोई अमृत पीवे अमर सो होए उस पुरखा नाही कदे बिनास जाके मन प्रगटे गुण तास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश शिव को दे मोह माया के संग न लेप मन में रखे हर हर एक अंधकार दीपक परगासे नानक भर मोह दुख तय ते नासे तब तमाय ठाड वरताई अंध पिया दुख नाठे भाई जन मरन के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पौ चुका निरपौ होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे जिसका सातन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी तित पाए चूके ब्रह्म गवन सुन नानक हर हर जस सरवन निर्गुण आप सर गुण पी ओही कला तार जन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बिनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोई सर्ब निरंतर एको सोए ओत पोत रविया रूप रंग पै प्रगा साध कै संग रच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली छार हर हर नाम कमावना नानक एहो तन सार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर अपावसा मीत बसारो चरण कमल रिद मह और तहारो करन कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वथ ए तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कोंटी उठ तावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख नित बाछे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस सोभा को करे भली करनी सा सोभा पज हर की सरणी अनक पावी रोग ना जाए रोग मिटे हर आव खद लाए सर्ब निदान में हर नाम निदान जप नानक दर गय परवान मन प्रबोधो हर कह नाए दे दिस धावत आवे ठाए ताको बिघन लागे कोए जाके हृदय बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौ बिन से पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म परगास तित कर जाए बसे अबनासी कहो नानक काटी जम फासी तत बिचार कहे जन साचा जन मरे सो काचो काचा आवा गवन मिटे प्रभ सेव आप त्याग सरन गुरदेव एव रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनक पाव न छूटन हारे सिमर साध बेद बिचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंचत नानक फल पाए संग न चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सोत मीत कटांबियार बनता इनते कहो तम कवन सनाथा राज रंग माया बिस्थार इनते कहो कवन छुटकार असहाती रथ असवारी झूठा डंप झूठ पसारी जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना नाम बिसार नानक पछताना गुर की मातों ले आने भगत बिना बोडू बेसियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार पूत सद हर को नाओ सहस पाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतर समैल बिन सजाए होमे बिख फैल होए अचिंत बसे सुख नाल सास ग्रह सर नाम समाल साड़ छाड़ सियानप सगली मना
ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੇ ਸੱਚ ਧਨਾ ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਵਿਵਹਾਰ ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਦਰ ਗੈ ਜੈਕਾਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਲਾਹੇ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹੇ ਏਕ ਸਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ ਮਨ ਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰ ਆਪ ਪੂਰਨ ਪੂਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਬਿਆਪ ਅਨਕ ਬਿਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭੈ ਏਕ ਅਰਾਧ ਪਰਾਛਤ ਗੈ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਏਕ ਜਾਤਾ ਸਲੋਕ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਧੂਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾ ਪੂਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਾਧ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੇ ਧਿਆਵੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤ ਏਕੋ ਟੇਕੋ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿੜ ਮਹਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੇ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਨੇ ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ ਉਪਜੇ ਚਾਹੋ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਰੇ ਸਰਨ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆਨ ਦਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗ ਬੁਢਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸੇਵਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਿਆਲ ਸੇਵਕੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਪਿਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭ੍ਰਮ ਗਿਆ ਇਚ ਪੁੰਨੀ ਸਰਦਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਦ ਸੰਗ ਹਜੂਰੀ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਧਨ ਲਿਆ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਸੁਖ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਘਾਲ ਨ ਭੰਨ ਸੁਖ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀਆ ਜਨ ਸੁਖ ਬਿਸਰੇ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ ਸੁਖ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਸੁਖ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਖੈ ਸੁਖ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਬਿਖ ਤੇ ਕਾਢੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗੰਢ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤਤ ਇਹ ਬੁਝਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਇਹੋ ਕਾਮ ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਭਗਤ ਪਾਏ ਤਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਛਾਰ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਨਿਧ ਨਾਮ ਬੂਟਤ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ ਸਗਲ ਦੂਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣ ਤਾਸ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ ਮਨ ਤਨਿਆਂਤਰ ਇਹੀ ਸਵਾਉ ਨੇਤਰੋਂ ਪੇਖ ਦਰਸ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮਨ ਬਿਗਸੈ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਏ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਵੈ ਸੰਗ ਏਕ ਬਾਤੀ ਜੇ ਕਰ ਮਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸੰਦ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਗਤ ਵਚਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਕਟਾਂ ਕਰਤ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪਨੀਤ ਭਗਤ ਪਾਏ ਲਾਵੇ ਮਨ ਹੀਤ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੁਖ ਪਾਏ ਏਕ ਨਿਮਕ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਬੜਿਆਏ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਪਹਾਏ ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾ ਪਰ ਸੰਗੀਤ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ ਭਲੀ ਸੁਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਮੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੋ ਨਿਵਾਸ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸ ਸਲੋਕ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਬ ਅਕਾਰੇ ਕਛ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਤਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਬ ਕਹਿਤੇ ਹੋਤਾ ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਤਬ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕੇ ਸੰਗ ਕਮਾਤ ਜਬ ਇਸਕਾ ਵਰਨ ਚਹਿਨ ਨਾ ਜਾਪਤ ਤਬ ਹਰ ਕੋ ਸੋ ਕੋ ਕਿਸੇ ਬਿਆਪਤ ਜਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਬ ਮੋਹ ਕਾ ਕਸੋਵਤ ਭਰਮ ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰਤੀ ਜਾ ਨਾਨਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਦੂਜਾ
जब होवत प्रभ केवल धनी तब बंध मुक्त को किस को गनी जब बेके हर अगम पार तब नरक सुर को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहस पाए तब सिख सब सकत कहो कत ठाए जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आपे आप अपने जोध धरे तब कवन डर कवन कात डरे आपन चलते आप करने हार नानक ठाकर अगम अपार अबनासी सुख अपने आसन तय जन मरण को कहा बिनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रभे का तब चित्र गवत किश पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप आप ये चर्जा नानक आपन रूप आप ये परजा जय निर्मल पुरख पुरख पात होता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन रंकार निर्बान तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छदर लगत कहो कीस जय ज्योत रूपी ज्योत संग समावे तै किसे पूह कमन त्रिपतावे करन करावन करने हार नानक करते का नाए समार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सोत भाई जय सर्व कला आपे पर बीन तै भेद देव कहा को चीन जब अपने आप और तारे तो सगन आप सगन कहा बिचार जय आपन ऊंच आपने आप नेरा तै कौन ठाकर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जे अचल छेद भेद समाया ऊहा किसे व्यापत माया आपस को आपे देश तय गुण का नाही परवेश जय एक एक एक भगवंता तय कौन अचिंत किस लागे चिंता जय अपने आप आपतियारा तय कौन कथे कौन सुनने हारा भो बेअंत उचते ऊंचा नानक आपस को आपे पहुंचा जय आप्रच्यो परपंच कार तय गुण में कीनो बेथार पाप पुण तय पई कहावत कु नरक को स्वर्ग बंचावत आल जाल माया जंजाल होमे मोह भरम पै भार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान आपन खेल आप कर देखै खेल संकोचे तो नानक एक जय अवगत भगत है आप जय पसरे पसार संत परताप दू पाका आपे तनी उनकी शोभा उनहु बनी आपे कुद करे अंध चोज आपे रस भोगन निरजोग जिस भावे तसे आपन नाए लावे जिस भावे तस खेल खिलावे बेसमार अथा अगणत अतोले जो बलावो त्यो नानक दास बोले सलोक जी जंत के ठाकरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कै दृष्टा राष्ट्रपति आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्थार जात पावे तां सरेट पाए अपने पाने लय समाए तुम ते पैन नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभ जी ओ आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल सरेट का जेता जी जंतर सब ताक हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोई ना मारा सो मुआ जिस मनो बिसार तिस तज और कहा को जाए सब सरीक निरंजन राय जी की जोत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलहार पूर्ण पूरे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव जाने आप अंतर जामे रहो बेआप प्रतपाले जीन बपात जो जो रचो सो तिसे त्यात जिस पावे तिस लय मलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हर नानक एक जान्या जन लागा हर एक नाय तिसकी आसन बिरथी जाए सेवक को सेवा बन आए हुक्म बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसिया निरंकार बंधन तोर पै निर्वैर आंदन पूजे गौर के पैर ए लोक सुखी पर लोक सहेले नानक हर प्रभ आपे मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का ए सुवाओ आठ पैर प्रापे खो नेरा मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हिरदे बसावो मन इच्छे नानक फल पावो हालत पाल दो लेहो सवार
राम नाम अंतर और तहार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसे ते साच परीखिया, मंत्र नाम जपो लेव लाए, दुख दर्द मन ते पौ जाए, सच वपार करो वापारी, दरगह निभे खेप तुम्हारी, एका टेक रखो मन माहे, नानक बोहर न आवे जाए, तह ते दूर कहा को जाए, उभरे राखन हार ते आए, निर पौ जपे सगल पौ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै, जिस प्रभ राखे तस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाए मिटे अहंकार, ते जन को कोई न पहुंचन हार, सिर ऊपर ठाडा गुर सूरा, नानक ताके कारज पूरा, मत पूरी अमृत जाके दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामे पुरख प्रधान, जिस मन बसे सोहत निहाल, ताके निकटन आवत काल, अमर पै अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया, सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन परगा, साष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल समिगरी एक सकट माहे, अनक रंग नाना दृष्टा है, नौ निधि अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम, सुन समाद अनहत तै नाद, कह न जई चर्ज बिस्माद, तैन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तेह जन सो जी पाए, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहया भगवंत, तरन माए आकाश पयाल, सर्ब लोक पूर्ण प्रतपाल, बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आ गया तैसा कर्म, पौन पाणी बेसंतर माहे, चार कुंड दे दिसे समाहे, तेह ते पैन नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ, वेद प्राण सिमृत मैं देख, ससिर सू नखेत्र मैं एक, बाणी प्रभ की सब को बोलै, आप डोल न कबहु डोलै, सर्व कला कर खेलै खेल, मोल न पाइए गुणे अमोल, सर्व ज्योत में जाके ज्योत, धार्यो स्वामी ओत पोत, गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन मैं एहो बसास, संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हिरदे सब धर्म, संत जना सुने सब बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन, जन जाता तिसकी रहत, सत बजन साधु सब कहत, जो जो होई सोई सुख मन, करन करावन हार प्रभ जान, अंतर बसे बाहर पी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत पत, तिस भावे ता करे बेथार, तिस भावे ता एकंकार, अनकला लखी नह जाए, जिस भावे तिस लय मिलाए, कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप आप भरपूर, अंतरगत जिस आप जनाए, नानक ते जने आप बजाए, सर्वभूत आप वरतारा, सर्व नैन आप पेखन हारा, सगल समग्री जा का तना, आपन जासे आप ही सुना, आवन जानक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया, सब कह मद अलप तो रहे, जो कुछ कहना सो आपे कहे, आग्या आवे आग्या जाए, नानक जा पावे तां लए समाए, इसते होई सो नाही बुरा, ओरे कहो किने काश करा, आप पला कर दूते आतनी की, आपे जाने अपने जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत अपन संग राच, ताकि गातमित कही ना जाए, दूसर होए तां सोजी पाए, तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक एहो जान, जो जाने ते सदा सुख होए, आप मलाए ले प्रभ सोए, ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जस हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जागत तराया, जन आवन का एह सवाओ, जन कै संग चित आवै नाओ, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तैस

करे प्रभ गज प्रगटे गोपाल महंत कै माथे नानक उदरे तन कै साथे सरण जोग स

साध संग लैना सो प्रसन्न पै गुरदेव पूरन होई सेवक की सेवा आल जंजाल बेकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ थारे नानक निभि खेप हमारी प्रभ की औतत करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुख मुनि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बस सो होत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख परगट सब लोए सब ते

गोबिंद भगत कै मन बिसराम, कूट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै, जाके मत कर्म प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए, जिस मन बसै सुने लाए प्रीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत, जन मरण ताका दुख निवारै, दुलाभ दे तत काल उधारे, निर्मल सोभा अमृत ताकी बानी, एक नाम मन माहे समानी, दुख रोग बिनसे पै परम, साध नाम निर्मलता के कर्म, सब ते उचता।

मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहु आप हाथ दे मोहे बचावहु सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिया सब बैरन को आज संगरिया पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अबर ना त्याऊ जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करिय हो रक्षा राख लेहु मुहि राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो बरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मुंह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर हूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह धार सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम।

दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर अकैठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव, आद जुगाद सरू सोयंग भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण घाता, जे अस तुज तब सरणी परे तिनके, दुष्ट दुखत हवै मरे, पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नै है, रक्षा होए ताही सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रिद सिद्ध कर्म सब हुई, दुष्ट शाह श्वै सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताही उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा, खड़ग कीत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लिहो उबारी, सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दुख ते लिहो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुभराता, किल बिक सकल

साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारेयन तिस साहेब की टेक नानक मनै माहे जिस सिमरत

पिंड सब तन अर पीजै इयो दर्शन हर जियो पाई है। भयो अनुग्रहो प्रसाद संतन कै

मांग मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुद्यागर।

नमः अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावो काल कलेह तन माह मिटावो सिमरौ जास विसंपर एक नाम जपते अगमते अनेके वेद प्राण सिमरत सोध आखियर किन्ने राम नाम एक आखियर किनका एक जेह जी अबसावे ताकि महिमा गणी न आवे काखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत ना कह मन विसराम रहाओ प्रभ कह सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कह सिमरन दुख जम नसै प्रभ कह सिमरन काल पर हरे प्रभ कह सिमरन दुश्मन डरे प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ कह सिमरन अन दिन जागै

सुफल फला से सिमरह जिन आप सिमर सिमराय नानक ता कै लागो पाए। रव का सिमरन सब ते उचा रव कै सिमरन उधर मुचा रव कै सिमरन त्रिसना बुझय रव कै सिमरन सब कह सुजय रव कै सिमरन नाही जम त्रासा रव कै सिमरन पूर्ण आसा रव कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माह समाए प्रभ जी बस सहसाद गिर सना नानक जन का दासन दसना प्रभ कौ सिमरह से तनवंते प्रभ कौ सिमरह से पतवंते प्रभ कौ सिमरह से जन प्रवान प्रभ कौ सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ कौ सिमरह से बेमोहताजे प्रभ कौ सिमरह से सर्ब के राजे प्रभ कौ सिमरह से सुखवासी प्रभ कौ सिमरह सदा विनाशी सिमरन ते लागे जन आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला प्रभ कौ सिमरह से पारपकारी प्रभ कौ सिमरह तिन सद बलिहारी प्रभ कौ सिमरह से मुख सुहावे प्रभ कौ सिमरह तिन सुख बेहावे प्रभ कौ सिमरह तिन आत्म जीता प्रभ कौ सिमरह तिन निर्मल रीता प्रभ कौ सिमरह तिन अंध कनेरे प्रभ कौ सिमरह बसे हर नेरे संत कृपा ते अनदन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे प्रभ कै सिमरन कबहना चूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी प्रभ कै सिमरन निःचल आस

संगत पाइए। छूटत नहीं कोट लाख बाही, नाम जपत तह पार पराही। अनक बिघन जह आए सिंघारे, हर का नाम तत्काल उधारे। अनक

नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगले कार, ब्रह्म ज्ञानी आवनिंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनि श्लोक, गुर तारे जो अंतर नाम, सर्व में पेखे भगवान, निमुख निमुख ठाकुर, नमस्कार नानक, अपर सगल निस्तारे अष्टपदी, मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रय रूप ना पेखे नेत्र, साध की टैल संत संग हित, कर ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद भिख्या पर हरे, मन की वासना मन ते टरे, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा या परस, वैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसान।

भाव है, पगा होती ही भगवंत भक्त का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग, मानते बिन सह सगला परम कर पूजय सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवे, तिस भगवती की मत उत्तम होवे।

नानक रचना प्रभृति बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदि कई कोट होय पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पैतीथ वासी कई कोट बन ब्रह्म उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तार है कई कोट कब काम विचार है।

कहीं गुड़ बोजोनी फिर है, कहीं कोट बैठ ही खाहे, कहीं कोट काले थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया में चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ के हाथे।

आगे करी बपरा जियो जो तिस भाव सोई फुन थियो कभू जनित में बसे कभू सो गर्ख रंग हसे कभू निंद व्यवहार कभू ऊब कास प्याल कभू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कभू नृत करे बपात कभू सोए रह दिन रात कभू महा क्रोध विकराल कभू सर्व किए उतरवाल कभू होए बह बड़ राजा

हस्तपति जिसके अंतर राजमान सो नरक पाती होवत सुहान जो जान मैं जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत आपस कहो कर्मवंत कहावे जन्म मरे बहु जोन प्रमावे तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक इहां मुक्त आ गए सुख पावे तन भंता हुए कर कृपावे त्रय समान का संग न जावे बवलस कृपान उख पुर करे आज पर पितरता का हो विनाश सब ते आप जाने बलवंत खैन मय हो जाए पसमंद किसे न बदे आप अहंकारी धर्मराज तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दर गए प्रवान

फेर फेरे अवतार अनक जतन कार्या तुम नहीं द्रव्य हर दर गए कहो कैसे गवे आपस को जो पला कहावे तिसे पलाई निकट नावे सर्ब की रेन जा का मन होए कहो नानक ताकी निर्मल सोए जब लागे जाने मुरते कछ होए तब को सुख नाही कोई जब है जाने मैं खर करता तबला गर्भ जोन में फिरता जब तार को बैरी मी तब लागने चल नाही चीत जब लग वो मग संग वाय तब लग धर्म राय देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हम छूटे

रात जय स्वप्न मनोवर्थ वृथ सब का जय नाम रंग सर्व सुख हो बड़ा भागी किसे प्राप्त हो कर्ण करावन आपे आव सदा सदा नानक हर जाव कर्ण करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार

समय आप उपदेश है समझे आप आपे रचे सब कैसाथ आप किनो आपन विस्तार सब कछ उसका करने हार ते बिन कह किस होए।

ठपरोय सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोय। उसद मन में कारणिकार कर मन मेरे सदव्यवहार निर्मल रसनामृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो।

हरन भरन जा काने तरफ होर तिसका मन तर ना जाने होर आनंद रूप मंगल सद जा कह सर्व थोक सुनिए कर ताके राज महराज योग में जोगी तप में तपीसर गृहस्थ में भोगी

आया सुवाद प्रभ के रंग राजन रहे गुर कै भजन पदार्थ लहे ओए दाते तो गाटन हार जा कै संग तरे संसार जनका सेवक सोड़ भागी जन के संग एक लिवलागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आद सच गा सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी

अलाक्षमिदानी वारं बार बार प्राव जपिय पी अमरते हुमान तन त्रपिय नाम रतंजन गुरु मुख पाय तिसके शवरना इंद्रसिताय नाम तन नाम रूप रंग नाम सुखर नाम कसंग नाम राज्य जंत्र ताने मन तन नामे नाम सुमाने उठत बैठत।

अविनाशी सुखे अपने आसन तह जन मरण कहो कहां विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किस होए।

संग रचन जिन जाता तिस की रहत सात बन साधु सब कैद जो जो होए सोई सुख माने कर्ण क्राम हार प्रभ जाने अंतर बसे बार पी ओ नानक दर्शन दे सब ओही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावे ता करे विस्तार तिस भावे ता कंकार अणकला लखिने जाए जिस भावे तिस लय मिला कम निकट कमन कहिए दूर आपे आप आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए नानक तिस ने आप बुझाए सर्व भूत आप वरतारा सर्व नैन आप एक निहार सगल समग्री जाका तना अपन जस आप ही सुना आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सब कह मदलिप तो रहे जो कि कहना सो आपे कहे आग्ञा आवे आग्ञा जाए नानक जा भावे त लय समाए ते सुना ही बुरा और कह हो किने कछ करा आप भला कर दूत ने की आपे जाने अपने जी की आप साज धारी सब साज ओत पोता अपन संग रात ता की गत मित कहीं न जाए दूसरो होए ता सोजी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक हो जान जो जाने तिस सदा सुख होया मिलाए लै प्रभ सोए

आवे नाव। आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तेह जन कहो सदा नमस्कार श्लोक। पूरा प्रभ राध्या पूरा जाका नाव नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी। पूरे गुर का सोन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे साथ साथ सिमरो गोबिंद माने अंतर की उतर आए तिंद। आस अनित त्यांग त्रंग संजना की धूर मन मांग छोड़ बेन आप छोड़ बेनती करहो साध संग अगण सागर तरहो।

सेवक नी सेव आद न्याल बकावत रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक निभि खेव हमारी प्रभु की उत्त करो संत मीत सावधान एकाग्र जीत सुखमनी सहज।

सच सोचाए सोच न हो भई, जे सोची लख वार चुपै चुप न हो भई, जे लाए रहा लिवतार भुख्या भुख न उतरी, जे बन्ना पुरिया भार सहस सियाणप लख होहे ता इक ना चलै नाल, किव सचियारा होइऐ किव कूड़ै तुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है।

ओंकार असंख नाम असंख थाम अगम अगम असंख लो असंख है सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुनगा अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे तिस सिर नाहे जिफुर माए तिब

रसना रस समाणी सच अलख बिडाणी ताकी गत कही ना जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो सच है सुनना नो पठाए हर जियो गुफा अंदर रख के बाजा पवन वजाया वजाया बाजा पवन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनिक ना दसवां द्वार दिखाया अनेक रूप नाव नाव ने दसदा अंत ना जाई पाया कहे नानक हर प्यारा जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन वजाया एहो साचा सुहेला साचे कर गावो गावता सुहेला कर साचा जिथे सदा सच ध्यावहे सचो ध्यावे जादु भावहे गुरमुख जना बुझावे एहो सच सभना का कसम है जिस बख्शे सो जन पावहे कहे नानक सच सुहेला सच्चा कर गावहे अनंत सुनो बट भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित

जैत सरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सत गुर प्रसाद मेरा हीर रतन नाम हर बसिया गुर हाथ धरियो मेरे माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे

0: संत साजन पै सरसे सुनते पुनीत कहते पवित्र बिनवंत नानक गुर चरण लागे सुनते पुनीत कहते पवित्र बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।
1: तू ठाकुर तुम पहरदास जियो पिंड सांग तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पात साही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याय, श्री अंगद गुर ते अमरदास राम दासे हुए सहाय, अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरऊ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई आय, जिस जिठे सब दुख जाय, तेग बहादुर सिमरै कर नौने दयावे ताय, सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी, ओ सब थाई होए सहाय।

आया जनाब दे भाणे विच बाणी पढ़दिया सिमरन करदिया बतीत होवे अरदास बेनती है सच्चे पातशाह जीओ अमन सिंह सच्चे पातशाह जीओ अज जन्मदिन है सच्चे पातशाह जी अरदास बेनती है अमन सिंह दे जन्मदिन ते आपदा शुकराना करदिया अरदास बेनती है कृपा करनी सच्चे पातशाह जीओ तंदुरुस्तियां चढ़दियां कला बख्शनिया सच्चे पातशाह जीओ स्कूल दे बच्चियां नूं उच्च विद्या दान वास्ते अरदास बेनती है कृपा करनी जी रहमतां प्रयत रखना चढ़दियां कला बख्शनिया सब दियां गुरमत अनुसार मनोकामना पूरियां करनिया बख्शिया खजानिया विचों कड़ा प्रसाद दी देग सज के हाजिर है करी पाक साल सोज पवित्रा हुन लाभ भोग हर राय आप जी दासी प्रसाद जो छके नाम वाहिगुरू वाहिगुरू जपे श्री मुख वाग दी बख्शिश करो सही प्यारे मेल जिना मिले आमदा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा आ गया पही अकाल की तब चलायो पंथ।

पड़ोसी भी सच एक ओंकार सतना करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ख अजूनी सैभ गुरप्रसाद जप आदि सच जिगाद सच है भी सच नानक होशी भी सच एक ओंकार सतना करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ख अजूनी सैभ गुरप्रसाद जप आदि सच जिगाद सच है भी सच नानक होशी भी सच।